0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: Very good. Okay, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਮਿਸਟਰ ਸਰਾਸ਼ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਰਾਸ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
4: ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
5: ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਜੀ।
3: ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ ਸਰ। ਐਂਡ ਸਰਾਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ?
5: ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 50,000 से 1,70,000 की फंडिंग है। मिस ना करें, कहीं भी इस पैसे को यूज करें, कॉल हमें अभी करें। अभी भी स्टाफ रेडी है एंड हमारा ऑफिस 7 दिन खुला रहता है।
3: वेरी गुड। सराश, इस लोन दे विच कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी भी हैगी है?
5: नहीं जी, यही इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। लाइक इसमें कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है। जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, हमारे पास अमीर से अमीर बंदा भी आता है, सिंपल से सिंपल बंदा भी आता है। तो लाइक इसमें कुछ भी गारंटी कोलैटरल नहीं है। कॉल करें, असेसमेंट कराएं, फंडिंग हासिल करें।
3: एंड सराश, एदा अप्रूवल रेट किन्ना का ते नाल की कोर्सेज सौखे ने, पासिंग रेट की आ?
5: हाँ जी, कोई भी हवाबाजी नहीं है इसके अंदर, कोई भी मैं इन्फ्लेट नहीं कर रहा इस चीज को। मैं अप्रूवल रेट इसमें 95% है, वैसे 99% है। 95% मैं कह के चलूंगा, तभी हम अपनी फीस बाद में लेते हैं, हमें पता आपका काम हो जाएगा। गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, आपके खाते में आता है, बैंक नहीं दे रहा, कोई कागज नहीं लगते नकली असली इसके अंदर, सिर्फ आपको NOA, बर्थ सर्टिफिकेट, आपके बच्चों के मैरिज सर्टिफिकेट, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सिंपल काम है, साफ काम है, 8 साल से हजारों को से कर चुके हैं, कोई भी चलाकी नहीं है।
3: वेरी गुड। एंड सराश, ये भी बताओ कि ये लोन की रेंज कितनी है, ते आपा लोन ये कितने भी यूज कर सकते हैं?
5: बिल्कुल जी, कहीं भी यूज करें। 50,000 से 1,70,000 डॉलर तक रेंज है। फैमिली साइज ज्यादा है, आपको ज्यादा फायदा है। आपको अगर आपका फैमिली साइज बच्चे ज्यादा है, किड्स ज्यादा है, आसान से कोर्स है, ऑनलाइन है, कोई एज लिमिट नहीं है, PR, सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आप है, फंडिंग को हासिल करें, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए।
3: सराश, ये जो लोन है इसका 0% इंटरेस्ट रेट है फर्स्ट 2.5 years के लिए। इस लोन के साथ किसी और लोन को भी हम पे ऑफ कर सकते हैं?
5: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लोग हमें बताते हैं कि उन्होंने इस लोन से, जो कि 0% पे है, विदाउट कोलैटरल, विदाउट टेंशन, ये जो लोन एग्जिस्ट करता है धरती पे, इससे लोगों ने अपने गाड़ी का लोन पे करा। क्यों? ये 0% है। गाड़ी का लोन कितने पे होगा? 7 या 8% पे, ठीक है। और बाकी लोग और भी बताते हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन। अभी एक फैमिली आई थी, वो कह रहे थे उनका पिज्जा स्टोर है, कहते हैं उनके क्रेडिट कार्ड पे 22% का लग रहा है ब्याज, है ना, तो उन्होंने इस पैसे से उसको पे करा। तो लोग बड़े थैंकफुल हैं, आके बड़ी दुआ देते हैं। और बाकी इसमें कोई भी चलाकी मीठी बातें नहीं है। कोई भी फंडिंग के वर्ड से हम डरते हैं, डरना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी चलाकी मीठी बातें, कागज नहीं सेट हो रहे। कॉल करें, हमारी फीस कितनी काम होने के बाद 199 है।
3: सो तुसी फीस भी बाद दे विच लेने हो? 1.5 to 3 months लग जाते हैं फंडिंग डायरेक्ट क्लाइंट के अकाउंट च आने के लिए। लोग दे देंगे कम होने तो बाद फीस?
5: अब मैंने आज ही हमने एक नई इंप्लॉई हायर करा है, उनका काम ही यही है पैसे लेने का, क्योंकि हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं नए बंदों का काम करने में, हम अपनी फीस भूल जाते हैं, लोगों का काम कर देते हैं, फीस लेना भूल जाते हैं आखिरी में 1.5-2 months बाद। अब स्पेशली हायर करा है आज उन्होंने, हम लाइक 20 बंदों से फंड, जो उनकी फंडिंग कब की गिर चुकी है महीने पहले की, उनको हमने घंटी घुमाई, सर पैसे दे दो, राइट हमें सबके पैसे आ गए। काम होने के बाद 199 फीस है। ईमानदारी से काम कर रहे हैं सर, बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं 8 साल में। इसमें हम लाइक कोई भी अगर कमीशन या परसेंटेज या कोई सेटिंग होती ना, तो हम महीने के हर रोज शोर ना मचाते रेडियो पे, और हम मतलब 5 क्लाइंट करते सो जाते, बट ऐसा कुछ नहीं है, साफ तरीके से कर रहे हैं। नंबर नोट करें, 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-3175। कॉल करो, एस्टिमेट लो, 437-264-31-75।
3: सराश, जे कोई साडे लिसनर्स ने उन्हां दा क्रेडिट स्कोर वीक है, उन्हां नूं मिल जू लोन?
5: उनका उल्टा जल्दी अप्रूवल आता है, कोई गवर्नमेंट दे दी है, बैंक नहीं दे रहा है, यहाँ पे जीरो भी है ना स्कोर, आ जाइए, कल कनाडा में लैंड करें, लेकिन पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, कोई एज लिमिट नहीं है, हाउसवाइफ, उबर ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, जो भी आपका प्रोफाइल है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अमीर गरीब में, ये कैडेट, इन सब चक्करों में गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट बस आपके छोटे से डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, दैट्स इट, वो असली होंगे ना, पीआर कार्ड में क्या रेफरी होगी, ना कोई एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट लगता है इसके अंदर, 50,000 से $170,000 हासिल करें, एग्जाम्स नहीं है, आसान कोर्सेज है, ऑनलाइन है, फुली ऑनलाइन, 20 घंटे कभी भी लॉग इन करें, हमारी फीस 199 काम होने के बाद आपकी ईमानदारी से, नंबर 437-264-3175 437-264-3175
3: नंबर एक बार फिर,
5: नंबर है जी 437-264-3175 कॉल करें, 437-264-3175 होने कॉल करो।
3: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।
5: थैंक यू जी।
3: SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ lawn ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ best choice। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ sod install ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, seasonal grass cutting, fertilizer, weed ਦੀ treatment ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ lawn ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। flower bed ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ plants ਦੀ trimming ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ residential, commercial ਜਾਂ farm house ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ call ਕਰੋ 437-655-1984 437-655-1984 एंड एक थोनू मैसेज असी देना, याद रखो जरूर मनप्रीत ढींसा, मनप्रीत ने साढ़े हजारा ही लिसनर्स दी इंश्योरेंस घटा के दिती है, गड्डिया घर दी इंश्योरेंस का वधिया रेट 416-500-1818 416-500-1818 ते कॉल तुसी जरूर जरूर जरूर करो। सो दोक बोल फिर वापस आपा उन्हें अमरिंदर गिल है, अमरिंदर भाई ने कमाल करती है।

0: कॉल करो 6475041557 या मैसेज करो पंजाबी लहरां दे इंस्टाग्राम पेज ते।
1: ढिलों वीडियो 1980 तो पंजाबी कम्युनिटी दे विच हाजर है। गोर रोड एंड एबनीजर ते लोकेटेड ने IPTV अते गुरबाणी रेडियो दियां सर्विसेज ले। भावे तुसी 4K IPTV सुपर फास्ट अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बॉक्स लेना या थोड़े कोल बॉक्स हैगा पर तुसी ढिलों वीडियो दे कस्टमर बनना चाहुंदे हो, नो बफरिंग नो फ्रीजिंग 4K सर्विस ले पुराना बॉक्स कदे भी अपग्रेड अपडेट करवाओ, तुसी ढिलों वीडियो नू कॉल करो। मेन प्रोडक्ट ढिलों वीडियो दा गुरबाणी रेडियो इंडिया लैके जाण वास्ते बेस्ट गिफ्ट, जिस विच संपूर्ण पाठ हैगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, नितनेम दियां सारियां बाणियां ने, ढाडी वारा ने, 300 शब्द ने, 110-220 दा चार्जर अते ईयर प्लग दे नाल नाल 20 घंटे दी बैटरी, टोरंटो एयरपोर्ट तो लैके थोड़े पिंड तक दा थोड़ा साथी ढिलों वीडियो दा गुरबाणी रेडियो। IPTV दी टॉप दी सर्विस या ढिलों वीडियो गुरबाणी रेडियो गो रोड एबनीजर 7 दिन खुले ने 11 to 8, 905-204-1313 जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 6475041557।
2: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
3: SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई आज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
0: SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਅਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 4376551

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कोई भी कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम कर दिया कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज कर देने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1 478-905-799-1478 रॉयल ऑटो सेंटर टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕ ਸਪਿਰਿਟ 905-621-4100 ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਹੋਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਟੈਕ ਸਪਿਰਿਟ 905-621-4100 905-621-4100 ਤੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ

ऑलरेडी वीकेंड आ गया, ऑलरेडी एंड ऑफ सितंबर दे दिन चल रहे हैं, सो अजकल दिन भी थोड़े जे गर्म सर्द जे चल रहे हैं, तो सारे नु हल्के फुल्के मिठे मिठे जे कोल्ड भी हो रहे हैं, ठंडा भी लग रही है, बच्चे स्कूले जा रहे हैं, स्कूल तो बाद भी फिर तेन पता ही है भी बच्चे कितने ना कितने थोड़ी बहुत ही एक वायरस या जर्म्स घर भी लै आते हैं। सो चलो कोई गल नहीं, जिससे अपने इम्यून सिस्टम नु स्ट्रोंग रखो तो माइंड सैट थोड़ा स्ट्रोंग रहे, आई थिंक यही मेन गल है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਕੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਨੇ ਰੌਣਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੀ ਲਿਆ ਮੁੰਡਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ

0: संगीत, देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां ना लबरेज, महकांदी सौगात मंडदा, सांचा विरसा।
1: सोमवार तक शुक्रवार 5:30 AM ते, सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक, क्रिसमस डे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
0: सांचा विरसा दी टीम 647-893-5294
2: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नु बेनती की जाती है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: थैंक यू जी।
1: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल
2: 647-706-6640
3: 647-706-6640। इस साल तो इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी, घर ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्तां ने सारा बजट हिलाता।
4: ओ जी अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदिया कोई फिकर नहीं, ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज।
3: होम ऑटो कमर्शियल ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानो एट 416-618-2761 416-618-2761।
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
6: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करनगे मॉर्गेज द किंग गिरीश शर्मा।
7: रेजिडेंशियल कमर्शियल रीफाइनेंसिंग डेट कंसोलिडेशन सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस प्राइवेट फंड्स
6: सब ले। याद रखो गिरीश शर्मा प्री अप्रूवल ही नहीं क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ, डीलिंग विद ऑल बैंक।
7: कॉल 647-606-8110
6: और विजिट sharmamortgages.com।
8: पाजी आज करे तंदूरी बनाओ पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना वो करे नहीं बन पाना।
9: हाय गाइस एंजॉय करो तंदूरी बॉयज वेज नॉन वेज स्वाद ले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
10: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्टी जागो अते वेडिंग ले आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200 सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
11: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
12: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
11: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
12: 6475-5294-647-835-5294 शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन ली याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नु 416-930-1251 416-930-1251।
13: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे। कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992 फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन 905-790-0560 6 Marconi Code Bolton 905-951-9394 Stephen Furniture ki dhamake dar festival season sale।
14: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
15: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ। 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ।
16: ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
15: 416-717-2929
16: 416-717-2929 ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨਿਟ 4 ਇਟੋਬੀਕੋ।

0: टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीतां दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7763 ते 416-917-7763

0: कॉल करो 6475041557 या मैसेज करो पंजाबी लहरा दे इंस्टाग्राम पेज ते। कस्टमर बनना चाहते हो नो बफरिंग नो फ्रीजिंग 4K सर्विस लई पुराना बॉक्स कदे भी अपग्रेड अपडेट करवाओ तुसी ढिलो वीडियो नू कॉल करो। मेन प्रोडक्ट ढिलो वीडियो दा गुरबाणी रेडियो इंडिया लैके जाण वास्ते बेस्ट गिफ्ट जिस विच संपूर्ण पाठ हैगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा नितनेम दीयां सारीयां बाणियां ने ढाडी वारा ने 300 शब्द ने 110-220 दा चार्जर अते ईयर प्लग दे नाल नाल 20 घंटे दी बैटरी टोरंटो एयरपोर्ट तो लैके थोड़े पिंड तक दा थोड़ा साथी ढिलो वीडियो दा गुरबाणी रेडियो IPTV दी टॉप दी सर्विस या ढिलो वीडियो गुरबाणी रेडियो गो रोड एबनीजर सत्ते दिन खुले ने 11 to 8 905-204-1313 जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो अज ही सानू कॉल करो 6475041557।
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
0: SS Lawn Care थोड़ी लॉन दी संभाल दे लई बेस्ट चॉइस। तुसी नवा घर लगवाना चाहुंदे हो या सॉड इंस्टॉल करवानी चाहुंदे हो, सीजनल ग्रास कटिंग, फर्टिलाइजर, वीड दी ट्रीटमेंट अते हर एक किस्म दी लॉन दी मरम्मत दे लई तैयार हन। फ्लावर बेड बनवाओ या साफ करवाओ अते प्लांट्स दी ट्रिमिंग भी करदे हन, चाहे होवे रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फार्म हाउस दा काम। अज ही कॉल करो 437-655-1984 437-655-1984। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਨਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475041557 647-504-1557।

0: Aldi Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: Hello, bro. Kithe hai tu?
2: Main client nu milan ja rahya. Soch rahya si Tim Hortons ch baith jaiye.
1: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unnanu. Private booths ne full privacy mildi hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
2: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग होगी।
1: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन, स्टील्स एंड कैनेडी। हमें कॉल करो 9054512600, 9054512600।
3: ड्राइव कर रहे हो? सोनू एंजॉय कर रहे हो? कुछ बोल रहे हो?
4: ड्राइविंग लाइसेंस?
3: नो।
4: पुलिस ऑफिसर?
3: नो नो।
4: ट्रैफिक लाइट्स?
3: नो।
4: देन
5: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज दा काम कर रहे पवन कौर गिल। 10 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
5: की तुसी कनाडा विच स्टूडेंट वीजा दे उते वर्क परमिट ते
7: जदो असी फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नु ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
8: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। मैं तवा किचन तो कैटरिंग करवाई सी। सच मनो स्वाद ही आ गया गरम गरम फ्रेश फूड। अगर तुसी भी कैटरिंग करवानी है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी तवा किचन नू। इना दी सर्विस एक्सीलेंट है। ताई ताई कहंदे ने टेस्ट ढाबे वर्गा ते प्रेपरेशन घर वर्गे।
5: 50 सनीवेल गेट, ब्रैम्पटन, माउंटनेश एंड बवेड़ा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699
9: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है। ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असेस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200।
10: ओ यार, बिजनेस दा माड़ा हाल होया पया। इन्नियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
11: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा ता हो ही नहीं।
12: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
13: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता?
14: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 तो 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 तो 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकदे हो 416-518-3200।

इस सॉन्ग मैन, आई लव इट। सुल्तान जी जिंदाबाद। आई रियली लव दिस सॉन्ग मैन। ये सॉन्ग सिर्फ सिर्फ सिर्फ मेरी जान के लिए है।

रख ली वफा है तू, चाह है तुझे चाह से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है तू।

0: ओंकार गंडा सिंह रिपोर्टिंग सर।
1: सत श्री अकाल जी।
2: की हो गया गंडा सिंह जी?
1: कुछ नहीं होना, की है
2: इतने औखे सौखे क्यों बोली जाने हैं?
1: एक मिनट में लात थोड़ी
2: की होया, तुसी आराम नाल बैठो, इत्थे गल की होई है मेनू दसो ता सही।
1: जेदे नाल मर्जी बिठा लो, हुण ते वैसे भी राती मैं गवांडियां दे गमले लागे बैठा रहा।
2: वैसे मेनू थोड़ी बहुत हिंट ता मिलदी पई आ, मैं चाहुंदी नहीं।
1: पता जेड़ा उधर मैं कौन रखिया तू?
2: ओहो, ए मेरे करके होया?
1: बस तू इधर मैं कौन रखिया?
2: हां,
1: जांदियां नू ओ ऑन हो गई।
2: ओहो,
1: उदो ऑफ होई है जदों मैं आख्या हुण ते पक्का ही ऑफ हो चलिया।
2: अच्छा नहीं नहीं सॉरी, मेनू हंसना नहीं चाहिए, कोई गल नहीं, मैं हैगी है ना, तुसी टेंशन नहीं लेनी।
1: पापा की कहंदे आ, चिड़ियां दा मरना ते गवारां दा हासा।
2: ए की मतलब आ?
1: मतलब हुण मैं चिड़ी ते बन नहीं ना सकदा। इस करके चिड़िया का मरना ते गवारां दा हासा, गवारां नू तू हसी नहीं, तेरा करके लत्तां तड़ालियां में।
2: देखो जी, मेरे करके तड़ाइयां ना तो दवाई भी थोनू मैं दवा दूंगी।
1: नहीं आहो जी गल्लां ना कर, पता लगे कि उन्हें एक तोड़ी दूजी भी तोड़ दे।
2: नहीं नहीं तुसी ऐ करो,
1: जेड़ा बंदे ने जरूरी काम जाना हुंदा उत्तों ही मैं बैठा रहा।
2: ओए होए, ए तां का मौका, पर चल फिलहाल तुसी चाह ना सार लो।
1: चाह नाल नहीं सारना, क्योंकि रोटी भी रात दी खवाई
2: उन्हें। आए मैं रोटी भी खवा दिंदी हां, चलो उस तों बाद फिर दवाई दा भी प्रबंध कर लैने
1: आं। इना कुछ तू कर ही लेना, हुण माइक बंद कर लै, जो इत्थे आ गई ते फिर गंडा सिंह नाल लड़दे फिर।
3: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारिया तो सोना हो भी।
4: बस इनी गल हो कर।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1115
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमाल लेके आए हैं साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मां। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घिओ, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मां, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट।
3: मित्रां दे जंक्शन ते
4: ਕਿਹੜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ?
5: ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ।
3: ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਾਰੇ
5: ਬਈ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ, ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਆਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਓ ਤੇ 100% ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬਿਗ ਔਰ ਸਮਾਲ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਟਰੱਕ 11 AM to 6 PM, ਆਲ ਡਰਿੰਕਸ 50% ਆਫ। ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
6: आज खुश तो बात हो गई था।
7: ओ ता होना ही है, जो तो टिनो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे, तै नकदा बनदा ही है।
6: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
7: बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी, लाइव टीवी चैनल इंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है। ते नाले ढिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है, ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा?
8: क्या कह रहे हो यहाँ पर?
7: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
9: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
7: पर ढिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां ढिल्लो वीडियो.com। होर कोई सेवा?